0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है? कौन?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा, तारो कोई छे नी रे भड़ा, तारे डीले प्रेरो खेच लिए कपड़ा।
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा, दारो सड़को मार ब्यान जल्दी पाड़ा, कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा।
1: बोल भाई।
0: अरे होटो आनान क्या मोटो, पीला कांटो काड़ा, पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।
1: रोज खाए।

0: जन्मे माता ने ये मानव घणो मोटो छ एर कीमत घण जबरदस्त छ
1: घण मोट छ
0: अरे कहने का कह दिया कित्ता बजाऊं रे ढोल ये एक सुवास तीनी ताले रोमोट
1: खरोच खर्चा
0: ये मानव छ जो पशु का अपनिया हो नर का कुछ न हो अरे नर ने करनी के नर रो नारायण वो
1: खरोच खर्चा
0: नर रो नारायण रो अपने हाथे में छ
1: खरोच
0: सरगे जारो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: नर के पड़े रो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: मां भेने काकी दादी केता ने शाबाश के रो अपने हाथे में छ
1: अरे भाई वाह
0: आनी ओळो सोळो बलन मार खान धोळो सो बेन गटारी कर पड़े रो अपने हाथे में छ
1: वाह भाई वाह रे

0: लेने को हरि नाम, देने को अनदान, चलने को निनता, डूबने को विमान।
1: बोल भाई बोल।
0: जेन डूबदा से जुको मक्कार सरनाई करो थटरण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु।
1: देख रे भैया।
0: जेन जुको नान क्या पुनो लेन जेन तुकारा महाराज को छ। नानपन देगा देवा, नानपन देगा देवा, मुंगी

0: करना क्यों नो छ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभी कर ले।
1: हाँ
0: अच्छी बातें सुध को आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो।
1: बरोबर
0: प्रभु रामचंद्र भगवान
1: है
0: रावण मारन पार दिनो लक्ष्मण ने मेलो।
1: अरे
0: लक्ष्मण राजनीति कूच लानू रे तो लक्ष्मण ने तो रावण क्यों अरे सवार कर रो आज कर लो, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो, अच्छी बातें वेर भी तो आज कर लो। पानी रंग बांध रे पाल, मरे रंग जिंकल रे काल, तारो डूबे रंग कत्तो ढाल, तारो बाप बेटो अंग मोटो काल। अरे झल्ली जरा मत कर रे हाल।

0: जगे न जो काल खादा था
1: हाँ?
0: अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर था
1: खरोज खरण
0: के तानी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम
1: हाँ?
0: प्रभु राम रघुवीर रो नाम
1: हाँ?
0: माता पिता सेवा
1: अरे
0: जगेर माई कूद सानो
1: हाँ?
0: ये जलमे माता ने मर्दो रे मर्दो अपन जरा कीर्ति रूप वर्दो
1: हाँ
0: मर्दो अपन कीर्ति कर दो।

0: अरे इंद्र पड़ गए भगा चंद्र वेगो काळो नारद चुगो अरे नारद चुगो भजनेरो चाळो
1: हाँ।
0: अरे 60,000 वर्ष विश्वामित्र कीदो उतो तप
1: बरोबर
0: अरे एक जबाई आई ओरकन विद्या वेगी गप
1: हाँ।
0: अरे भस्मासुर मौनीर सो बजान पड़न वेगो खाक
1: वाह भाई वाह।

0: चरे भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने शरीरन का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आवरो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन जिठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप चढ़गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़गो तो तू डगर जाई छी डगर जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जा रो चार नार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहेब 1000 रुपया दे दे
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: आनी
0: तू को पथ पाल खाटो खरो मत खोगन के दिनो ठीक सन के तानी 1000 रुपया दे आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तू जो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी जो हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो को वेगो ढगर को ढगर
1: हाँ।
0: को तू कहते केवड़ी व्यापारन को नहीं गयो
1: हाँ।
0: सारी ताने खड़ी कराना को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले।

काई के मिले छ? अरे भगवाने समझारो पत कुन सोच डाक्टर गने रो पति वेगो खटो खरो न खादो तो ताप लग जा छ। डाक्टर समझा ज्ञानी श्री भागवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबा रो गाता नवनाथ वास्तानी मारे गोपाल कृष्ण रे 84 तोड़े रे पायरी कर बेसे रे तो पत कुन सोच। अरे अपने घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी, अरे दूसरे घरेरी सिरा पूरी छरखा केरी, अरे अपने घरेर मांद सुंदा नारा तने लागिरे लंगाए पार, अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो, जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो, देवे कंसरे तराजुन कांटो, अरे तोला उंदा

0: घनमोड़ च कबीरदास महाराज के मोलो च। अरे कहने का कह दिया कितना बजाऊं ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुवास्ती नी तालाऊं का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर माल कणक दी पानी इंदर की
1: है,
0: तो पानी की जन वो तो कोई दी भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है।
1: हाँ
0: तो तू काई करे ची मार माल कणक दी कोई दी बोल रो चा
1: तन
0: घर कुराड़ी आलाई ची वो नमा थार खुरू बुर के
1: खरो खर।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल रहे पर तुझको पेटे में कणपला लाई ची
1: है।
0: अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची
1: है।
0: तो ना लात छूटे नहीं। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी
1: हाँ।
0: गरीबेर माल कर शेर भोजाई लागत है।
1: तू
0: क्यानु मैं भी तुझे कान काटे कुटे खुतरा नाई लोकुर घट कर उड़ू छू। मारी भी माल करें जबरदस्त भेड़ गोच है, वो रोई काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए, दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा श्रम नहीं आए। आपन माल कने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर का तो नानकीच काय बेटा। अरे कीड़ी थी ब्रह्मदेव तुनी इज्जत सारक छ कन केन काय।

एक छटाक तेलेर माई मावली काई करे रे भा मु करता नहीं ऊंदा एन की तो एक नदी बूंद पड़ते खमत यारी शेज पड़ गए छोरार गावली रे माई दीज बूंदेर माई हेड भगला तपरच फक्को वचकर जाच हरोगार पानी खान सत्तो पड़ रे छी अन एक दारू तो छूटे नी तू मानस का मानस का अरे लार देख साधु संत काई कर गए मोती वालो सदा क्यों को चो कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सौता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संत सुकुबाई चोका मेला सजन कसाई निवर्ती ज्ञानदेव सो पान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोहिदास अमर नरहरि सोनार गाड़ गए बाबा कैकारी बाबा सुदगुरु स्वामी नामानंद बाबा नामदेव कीर्तन करी पुड़े नाचरे पांडुरंग हरि नाचता नाचता गलाला पितामर कबीर मने देवा पितामर आवर मुनेर मुके मायरो बोल छ अरे तू सामलो तो तारो कल्याण वे जाए थोर संताचा महिमा आले

सदा सुखी काई के छ। अरे इने काम यनी बेटा हुन सुना जको कीर्तन भजन करते डिग्री हिंडे छ 10 12 रुपया लेले छ। अंगु चलो जा उ चलो जा खोज के बेटा ना त काम करके कळ छ। अरे खोजे ना आए कोन तिरे पांच अंगली बरोबर छनी हम कते दी आए छ। हमें वैकुंठ वासी आलो।

तो ना लकड़ी वोल रतो सुतारे समझ जानू सुतार छोलन बरोबर करत लोवा वोल रोकन केन कतो लवारे गन जानू छोलन वन को तपान कूटन बरोबर करत अरे तू वोला वागरोस तो बेटा कीर्तन भजन पूती प्राण सामना बरोबर सुदो वे जाई छे कन संगत करो रे सज्जन की बढ़त बढ़त बढ़त जाए संगत करे दुर्जन की तो घटत घटत नीचे आए संगत करी छेली गजकी मनमान फल खाए।

हाथ जोड़ना नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे भगवान, एक नाम ले लो रे भगवान, रा भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे काई पड़े नी रे, काई कम पड़े नी रे तुम्हारे जिनगानी ना।

0: अबा तू केस अरे माटी रोज गीत गायो बाहर को गीत गायो बाहर तो को मैंने बुड़का बसा रेड़ अरे सामल कान भरन बाई कुछ को कहीं लागत
1: रोज खर्चा।

0: सेवा की दिरे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चालना ये सता। अरे कली युगे माँ बनना की गीता
1: वाह भाई।
0: अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भर नितो सतवाले जाऊ तार
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देव रो चरण रो पानी लाई तीनी देव पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीनी हाथ तीन हुंडा धारण माता पाने घर हलाई।

0: माता तार पेट माते निकन तार थट्टा कोनी करूं ए वेद पुराणे में से वाते सिसुको तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी तारो देव स्वर्गे में छेनी तारो देव पाताले में छेनी तारो देव पूजी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो।

सेवा सेवा कना कांदे पाड नाच कोनी क्यों रे जलम दिवाली माता तोन में अनुसुया माता कुणसी देवें धुकेन की थी कोनी की काय की दी वो ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाहरी बातें सामने आए तो वो रो तो बरोबर करस कू फेरस भाई बाहर आरे मारो माटी तो बाहर कू फेरस भाई लोग देवे मानसे ना दोरी फिर भी ते भौरियाला दोरी फिर भी ते भौरियाला।

0: बाईने डिलेम देवा आवच
1: हां
0: बाईने डिलेम देवा राज भगत भी खेलचन वोई खेलच ठीक छ
1: खरो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखू आमरे भा सरपंचर बाई रायनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाई डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काल काबर वेरा आर दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया च फसायव छ बाई जको काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेठ बैठो तो वो कहीं कि दो बाई डिलेम तो देव आरोस को लागो 550 रुपया कड़े खसोर मिली छो तरा पीसी काली दो को तो कला बाई ने कहीं कहे वालो छ के देता नहीं कन बैठो तो छोरा कहेंगे तो घाल दो पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो बाई कहीं कच गप्पे स्तोन डाकने खाता गप्पे स्तोन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना कहीं भी पाले गए तो गप बैठ रहनु पर लबाड़ छ माया बड़ी कटूर छ काठ कली दो खावत छ अरे हकीम बिचारो कतकत दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुलचुतो ने
1: का का
0: हजार सूर्या भड़थानी
1: हाँ
0: अन वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हाँ
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आवड़ी बिली देवी तार माई कुं घुस जाती है ये लबाड़ लबाड़ लबाड़ माटी आंग हुबो तो ये छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने कहें कतरे
1: हाँ
0: करी ना वो कहें क्या लागो मार मालकन मन बलारी श्रे राम आयो यारी मद्दी करूं जुए ये कचवच साटा खोदूं ये कचवच धूड़ पाड़ूं ये कचवच मनद्दी करे यारी या करो हाँ। बेटा तारो बरो बर करू बेटा तारो कल्याण करू बेटा तो डबल बनू बेटा वाया की दे जना ये माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की देना सात फेरा भरना यरो माटी हो अब ये डीलर माए आओगे जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी हसी बाई दर वेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता को भुकम ये तुगो टेम आओगे सा वो रे सारू तुगो भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरासी चुका लो।

0: माटीर बाहर बात सामने कुणावगे
1: कुणावगे
0: ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घरावगे
1: अनेक
0: निरंजन भिक्षा आये बाई आले अतिथा मुरबर द्यावे मागे पुढे पाहू नका तुकाराम महाराज के उगोच करण केताने भिक्षा भरला आणखी याडी नूला कुल्यावाचो भुंगळी भिक्षा तार मायर कोथी मैं हुई जुभाल ठीक स गे माई पतिदेव अंतर्दशी सुतो तो गड़बड़े थी की काय लागो काय गड़बड़ चाल रो गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए मन काय के रे भुंगळी भिक्षा घाल के रे ऊ के लागो तारे माई वत चमत्कार तो करेल लगा नमस्कार म काय करे आलो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाकी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू ऊट हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़न बसार देनी पगे पर माथो मेल देनी पग धोनो पानी पील दी तीनी देवे पर पानी मार देनी तीनी देवे रावड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे में हुंडा झला देनी पालनो हराती बेसगी केर जरे पर बेटी है वेंडी डीले माए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर माथो पटकले छी माटी कुम बोले छी माटी ती तो शुद्ध बोले मुंडो भरन बोल माटी एवडी धुनी धोकत एवडी माटी कुम बोलच धोड़स मुंडेरा हरेगार जाबड़ेरा मुरियामा खाईनी याड़ी पाड़ेनी हिराण काई मारसा मुंडो फिर जणीवी काई सारी तांडे लान ये न घाल दू काई सारी तांडे लान घाल दू के चिन धुनी पर मातो पटके ची धुनी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने माई जर मीना बरो सुती तो नी याड़ी साई वे ने करन के भाई।

0: नारद स्वामी चलोगो रे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना ये वेंडी जावे ननका ननका छिछा करन पार मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोज खा
0: रे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुया माता कना ए जन्म देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जा मां बात खर्च मारो कालो तो ना तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जन्म देवाली माता तू चढ़गी हम हारगी हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देकर लार देकर आंगन हास अजी नानके नानके शिचार करना के तो काई के आंगन के तो तीन ही वचन दे गए दत्तारो अवतार वेतानी मोहर गणे माई जल में लीदे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बेस गए अनि निद्रा दुगा जी जुगो मोहर गणे न करत अपना खेल तमान वाई छात्री ताकत मारी जल में जड़ी माताम छ पर काई करू लागत

सेवा की दी रे सांडलिया माता। अरे तीन दार सूर्यान थमाता नी ब्रह्मदेव कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई, अरे सूर्यान तीन दार थमाई।

0: छोरी व्यक्ति मायरी आतरे भार दखाणु तलवारेर धार वरो मालक कसो ते वेंडी
1: कसो वेतो
0: गोडे ती टांगे छनी पूरी ती हाथ छनी केला पासरो दुख कोड्यालो रे कोड्यालो वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काय करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना ए कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक काळो रो आंधो रो लंगडो रो खुळो रो मारे नसीबे मसकन केन काय करे ओल्डी बसार ताणी वो कोड्याले उंगळी घाल अन पाणन छेटी मेल द अन वो पाणी ने तीन पसी पिवासे 12 वर्ष दाडो सेवा केली
1: वाह भाई वाह
0: भारवर सेवा की दे दार बाटी नालती माई बेटी आणि इ जको भारवर पति देव बैठो तो वेशा नामेर बाई जको वर गली माई जारी थी वोन देख ली दो आणि लंगडो काई की दो गप से जको सोगो मालकन बाटी माटी करता ने सांड लिया भाई आई ऊट पति देव बाटी खो खाऊनी म का खाईसनी का खाऊनी जको वसंत ये ले वचन देख अपने घरे मुंडागे जको मखनाई कोन दियो तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सामन ले जो तो मैं बाटी खाड़ नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे कि नहीं चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुछ तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खड़ा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाई धूण ताने काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालन था कहीं करे लागू

गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला पर एक दाड़ू भाई काई की दी ये गोपाला गोपाला करे वाला कौन तक के ने वन पकड़ी दी काए छोरी काई करी छी भाई काई करी में कुछ है मन वचन द ये लो वचन काई करी छी ई देखे भाई मारे घरे मुंडा जे तू गीती के छे आर दाड़वेगे पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन तू वो भाई साहब लेगी तो ठीक में फांसी खान मरजा करे छे यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बेतो काई है जल में देवाली माता गोरे ती टांगे छे नी कुणी ती हाथ छे नी केड़ा नहीं पाथरो जेन मारो सोने सिर को कियो सोने श्री केरी तम भी काई करो पगू पड़न कुछु हाथ जोड़न कुछु तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबेरो खेल छ तो वो न मारो देव ग्रह समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी वाज आए करण के तानी वो माटी ने जो को वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नी तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूनारो छो कू मेलू वो केला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ एकांधी टेमे ने फलाना कोडाओ घर से आजको तो मारो धंधो पड़ जाए बंद याड़ी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डिम घाले तानी भारत जारी भारत जारी पण भगवान मारो निलारंगेरो घणु खेळ्याच देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेळ्याच देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16108 नारी भोग